0: FM 100's time check. It's 7 a.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कानूनों की पाबंदी कीजिए। FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365। Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद, हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
5: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
6: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोए। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कानूनों की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM247365।
5: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
6: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें, या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
5: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं, जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं। इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। रजिस्टर नाउ एट cyberhackathon.pk।
6: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
7: पाकिस्तान इज बिल्डिंग अ सेफर स्मार्टर डिजिटल इकोसिस्टम एंड वी नीड योर टैलेंट। स्टेप अप, बिल्ड अ साइबर सेफ लाइफ एंड अनलॉक प्रीमियर करियर्स इन साइबर सिक्योरिटी एट द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
0: This program is brought to you by
8: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja.
4: And Sir Sub's Nitro Force ko laga aur jeet taja.
0: And
9: Shaukat Khanum, Karachi ki takneef.
10: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
12: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
13: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے،
14: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
15: ہماری ذمہ داری ہے،
16: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
0: لائک اس آن facebook.com/fm247365 FM 100
6: 31 साल
15: FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
17: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.

0: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद, हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
4: सर सर, नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें, या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
5: Pakistan is building a safer, smarter digital ecosystem, and we need your talent. Step up, build a cyber-safe life, and unlock premier careers in cybersecurity at the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
6: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
7: This program is brought to you by
8: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
4: And Sir Sub's Nitro Force ko laga aur jeet taja.
7: And
9: Shock of Khanam Karachi ki takleef.
10: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247 365.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: secure.
1: Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
2: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
3: This program is brought to you by
4: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja.
3: And
5: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
3: And
6: Shaukat Khanam Karachi ki takleef.
7: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
9: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा. तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान. अज़्म-ए-इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान.
8: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
10: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है.
11: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखे.
12: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं कब्र च चला गया, मैं नहीं बचा.
13: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया.
10: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें.
14: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा.
10: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम. मुलगीर क्रैकडाउन जारी. एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं. अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें. मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें. इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें. ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें. हुकूमत पाकिस्तान.
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365.
15: FM 247365. किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
16: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
15: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
0: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
16: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
15: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
0: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
16: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
0: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
15: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
16: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
15: आइए वेट से आगे का सोचें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। एंड सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा। एंड
4: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
0: Us on facebook.com/fm247365
5: fm247365.
0: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
5: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद, हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: This program is brought to you by
6: Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा,
7: and सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा,
8: and शौकत खानम कराची की तकलीफ।
9: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं। घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: This program is brought to you by Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja. And
3: Shaukat Khanam Karachi ki takleef.
4: Khawateen o hazrat, manshiyat wo zehre qatil hai jiski sanjeedgi ka ehsaas insaan ko tab hota hai jab ki zehr hamari ragon mein saayid kar chuka hota hai. वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है. मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है, जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है. घर दिल से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है. खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखें ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके. हमारा आज़्म एक कौम, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।
2: FM 100 Like us on facebook.com/fm247365
3: 247365 कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Back to back, only music, no RJ talk.
5: Only music, no RJ talk.
4: This is.

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: FM 247-365

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
1: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है, तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्ररा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें।
6: اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
7: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
8: FM 247-365

0: This is FM 100.
1: Come on.
2: FM 100's time check. It's 11 a.m.
3: जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
4: अहमद हटो वहां से।
5: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
6: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
7: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
8: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
1: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
3: FM 247365 FM 100
4: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
3: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: آل رائٹ جی, تو ہم آ چکے ہیں واپس اور آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے کیونکہ آپ سب سن رہے ہیں پروگرام کوکنگ اسپیشل ود می فاطمہ خان اینڈ وی ہیو کوکنگ ایکسپرٹ ردا آفتاب. تو ردا, آج تو آپ لنچ اپنا گھر جا کے بناتی ہیں, تو کیا بنانے کا ارادہ ہے؟
1: اچھا, رات کو ہم لوگوں نے بنایا تھا یہ مٹن کا پلاؤ بنایا تھا, اور ابھی دیکھتی ہوں جا کے کیا کرنا ہے, اس لیے کہ آج میرے پاس ٹائم تو بہت کم پڑا ہوا ہے, جاتے مجھے 2 بجے وہاں پہنچنا ہے, تو بس دیکھوں گی کیا ہوتا ہے کیا نہیں. تو پلاؤ تو رات کا ویسے ہی پڑا ہوا تھا, انہوں نے کھایا ہی نہیں تھا, مٹن کا بنایا تھا. تو اگر کچھ ہوگا گھر میں سامان آ گیا ہوگا تو وہ ساری چیزیں میں ایک ساتھ پریشر کوکر میں ڈال کے چڑھا دیتی ہوں. تو آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں روٹی نہیں پکا پاؤں گی, ٹائم میرے پاس بالکل نہیں ہے, تو یہ میں کہہ دوں گی منگوا لیں. باقی یہ کہ وہ ساری چیزیں ایک ساتھ پریشر کوکر میں ڈال کے 5 منٹ والا سالن بنا لوں گی چکن کا.
0: زبردست ہو گیا, 5 منٹ والا سالن آج کا بنانے کا ارادہ ہے. ویری نائس, ویری کوئک. یہ اچھی بات ہے کہ کوئک ہونا چاہیے انسان کو. رضا آفتاب از ویری کوئک, تو زبردست ہو گیا کہ آج رضا اپنا کوئک سا.
1: پتہ میں کیا کرتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں جس طرح سے میرے پاس ٹائم بالکل نہیں نا, سب سے پہلے میں چولہے پہ پین رکھ لیتی ہوں. پین رکھ کے نا اس کے اندر آئل نہیں ڈالتی, ورنہ وہ نا بہت گرم ہو جاتا ہے. پین چولہے پہ رکھتی ہوں اور جتنی دیر میں پین گرم ہوتا ہے اتنی دیر میں پیاز کٹ کٹ کٹ کٹنگ کر کے نا پیاز ڈال کے پھر آئل ڈال دیتی ہوں, اور پھر آئل اتنی دیر پیاز براؤن ہوتا ہے اتنی دیر میں چکن کو دھو کے صاف کر کے باقی چیزوں کو کٹ کر کے پھر ساری چیزیں ایک ساتھ ڈال کے اس کو بند کر دیتی ہوں. تو اینڈ میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں بنائی کرو, ہری مرچیں, ہرا دھنیا اور پسا گرم مسالہ ڈال دو تو وہ تیار ہو جاتا ہے. تو میری گھر کی کوکنگ تقریباً ایسی ساری ہوتی ہے, جھٹ پٹ والی.
0: جھٹ پٹ والی ہونی چاہیے بالکل. اور آج کل جو ردا گیس کی سچویشن ہے نا, اس میں تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جتنا کام جتنی جلدی ہو جائے وہ اچھا ہے, تاکہ ہماری جو ہے وہ ایک ٹینشن ختم ہو جائے, کیونکہ ابھی آ رہی ہے تبھی جا رہی ہے, اور اب تو جو اس کے لمیٹڈ آورز ہیں نا اس میں بھی وہ مکمل آپ کو میسر نہیں ہوتی ہے. تو اسی لیے اچھی بات ہے ردا والی کوکنگ آپ لوگ بھی کریں.
1: اصل میں ہوتا ہے کیا ہے, دیکھیں صبح جو گیس جو ہوتی ہے نا ہمارے یہاں تو 9:15 بجے چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد 1 بجے آتی ہے میں گھر پہ نہیں ہوتی, 1 سے 3 بجے ہوتا ہے تب بھی میں گھر پہ نہیں ہوتی, ظاہر ہے میرا شو کا ٹائم ہوتا ہے. جب شام کو آتی ہے تقریباً 7 بجے آتی ہے, اور 7 سے 9 بجے تک کا ہوتا ہے, 9 کبھی 9:30 بج جاتے ہیں. اب اس دوران یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, ظاہر ہے کھانے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ یا دوپہر کا لنچ بچوں کا ہوتا ہے یا رات کا جو ہوتا ہے, تو اس دوران اتنا جو ہوتا ہے کہ وہی ہبڑ دبڑ جھبڑ مچی ہوتی ہے, تو دودھ گرم کرنا ہے, کچھ لے کے جانے کے لیے چیزوں کا گوشت بوائل کرنا ہے, تو وہی ٹائم ایسے پتہ ہی نہیں چلتا گزر جاتا ہے. تو سلینڈر میں ڈر کی وجہ سے رکھتی نہیں ہوں, ظاہر ہے میں پیچھے ہوتی نہیں ہوں, بچے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو جاتا, اس وجہ سے میں وہ رکھتی نہیں ہوں. الیکٹرک کا چولہا رکھا ہوا تھا تو اس کا بل بہت زیادہ آتا ہے, تو یہ بھی بس کس کیا کیا چیزیں پتا ہے.
0: صحیح بات ہے واقعی میں. اور پتا ہے میں تو یہ کہتی ہوں رہتا, اگر کسی چیز سے ڈر رہے ہیں نا تو واقعی میں وہ کام نہ کریں, جب ایک ڈر ہوتا ہے نا آپ کو تو وہ چیز ایسی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے احتیاط بہت بہتر ہے کہ نہ کی جائے احتیاط, اور مطلب آئی مین احتیاط کی جائے, دس از ویری امپورٹینٹ. اور اسی کے ساتھ ریسیپیز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے, یعنی کہ لوگوں کے میسجز ہمارے پاس موصول ہو رہی ہیں جسے ہم کریں گے ایک ایک کر کر شامل. تو ردا ہمارے پاس آ چکی ہے پہلی ریسیپی کی, مجھے بیف برگر کی ریسیپی بتا دیں.
1: چلیں جی, بیف برگر کا نوٹ کر لیجیے گا. بیف برگر کے لیے کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, بیف کا قیمہ لے لیجیے گا. آپ نے تقریباً لینا ہے اس کے اندر 1/2 کلو لے لیجیے گا, وہ تو کباب ویسے بھی کام آ جاتے ہیں. 1/2 کلو آپ نے بیف کا قیمہ لینا ہے, اس کے اندر 1 گڈی لہسن کی, 1 ٹکڑا ادرک کا, 2 پیاز, تھوڑا سا ہرا دھنیا اور 2-3 ہری مرچیں. اچھا, یہ جو ثابت چیزیں نا اس کو چاپر میں ڈال کے بالکل باریک باریک, یا پھر ہاتھ سے بالکل آملیٹ کی طرح باریک باریک چاپ کر لینا. اب قیمے کا یہ کیجیے گا کہ قیمے کے اندر آپ نے ڈالنا ہے 1/2 کپ کے جتنا آپ ڈال دیجیے گا, یا تو 2 بریڈ کے سلائسز ڈال دیجیے گا یا بریڈ کم ڈال دیجیے گا, ٹھیک ہے, تاکہ اس کی بائنڈنگ اچھی سے ہو. اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا 2 کھانے کے چمچ سویا سوس, 1 چائے کا چمچ بھر کے کالی مرچ, 1 چائے کا چمچ لال مرچ پاؤڈر. پیپریکا ڈالتے ہیں لیکن لال مرچ بھی چلے گی, ٹھیک ہے. کالی مرچ, لال مرچ, تھوڑا سا سویا سوس, اس کے ساتھ آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر تقریباً لہسن اور ادرک, تو ہم نے چاپر میں ڈال دیا تھا, تھوڑا چاپ کیا ہوا اچھا لگتا ہے. اچھا, یہ تمام چیزیں ڈال کے آپ نے ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے, یا تو 2 ڈبل روٹی کے سلائس یا تھوڑا سا بریڈ کم جو بھی آپ کو مل جائے, اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس میں 1 انڈا بھی شامل کر دینا. تمام چیزیں مکس کر کے اب آپ نے اس کو 1/2 گھنٹہ ریسٹ دینا ہے, تاکہ وہ جو ظاہر بیف ہے وہ مسالوں کو اچھی طرح سے جذب کرے گا, تو تبھی وہ گوشت بھی گلے گا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے کباب کا شیپ دینا ہے اس کو, تو کباب کا شیپ دے کر اس کو توے پہ فرائی کر کے آپ نے نکال لینا. आप बर्गर बन लीजिएगा, हल्का सा मक्खन लगा के उसको हल्का सा आपने सेक लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने सलाद के पत्ते ले लेने हैं। अब इसके अंदर मायनीज, थोड़ी सी उसमें मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल के इसको, इसकी ड्रेसिंग जो है वो तैयार कर लेना। अब जो आपने बन रखे हैं उसके ऊपर आपने क्या करना है, ये जो पहले एक सलाद का पत्ता रख, पहले मायनीज और वो टोमेटो केचप वाला मिक्सचर लगाएगा, फिर आपने इसके ऊपर एक सलाद का पत्ता रखना है, उसके ऊपर आपने बर्गर बन रखना है, उसके ऊपर थोड़ी सी आपने दोबारा से ये टॉपिंग करनी है ताकि वो कबाब बन जो है अच्छी तरह से जुड़ जाए, वही सॉस वाली वो डाल दीजिएगा। चीज डालनी तो स्लाइस चीज डाल दीजिएगा। तो अब इसको आपने ऊपर वाला दूसरा हिस्सा रखना है और बेहतरीन किस्म के बीफ बर्गर जो है तैयार हो जाएंगे। देसी स्टाइल में करेंगे तो उसमें मसाले ज्यादा डाल दीजिएगा और इसके अंदर चटनियां डाल दीजिएगा, जिस तरह से मैंने हरी चटनी बताया था, लाल चटनी बताया था, तो वो आप डाल लीजिएगा।
0: ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया रिजल्ट। आपको बीफ बर्गर की रेसिपी भी बता दी है कि किस तरह से आप बीफ बर्गर जो है वो बना सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरी रेसिपी की जानिब भी हम चलते हैं कि मुझे पाई की रेसिपी बता
1: दी। चलें जी, पाई का नोट कर लीजिएगा, बटन पाई कह रहे हैं
0: जी। जी,
1: अच्छा। उसके लिए क्या है, पहले तो आपने उसको बहुत अच्छे से धोना है, क्योंकि उसके अंदर एक तो स्मेल होती है, दूसरा उसके ऊपर बाल लगे होते हैं। आपने क्या करना है, आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 12 पाए या 6 पाए हैं, तो आधा कप आपने उसके ऊपर सिर्फ सूखा आटा डाल के उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना। फिर उसके बाद आपने हाथ से मस लेंगे तो छोटे छोटे सारे बाल जो होते हैं ना वो आटे के अंदर लपट के वो निकल जाते हैं। उसके बाद आपने 3-4 दफा गर्म पानी से उसको धोइएगा। 3-4 दफा आपने गर्म पानी से धोना है, धो के आपने उसको अलग रख देना है। अब आप क्या कीजिएगा, उसके अंदर डालिएगा आपने एक जायफल साबुत, ठीक है, ऊपर से छिलका तोड़ के जायफल साबुत डाल देना। उसके साथ आपने एक सिर्फ छोटी प्याज, एक गड्डी लहसुन, आधी चाय का चम्मच नमक डाल के उसको अच्छी तरह से आपने गला लेना है। जब वो अच्छी तरह से गल जाएंगे, उबल जाएंगे, अब बेशक वो आपने लहसुन के छिलके वगैरह वो आप निकाल लीजिएगा। दूसरी साइड में आपने एक प्याज को ब्राउन करना है, प्याज ब्राउन हो गया, अब आधा कप पानी के अंदर 2 चाय के चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर डाल देने, ठीक है, 2 चाय के चम्मच पिसा धनिया डाल दीजिएगा, साथ में आपने आधी चाय का चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक, ठीक है, ये और अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन आपने 2 खाने के चम्मच। अब ये पानी में घुला मसाला इसमें डालना है और इसको मसाले को थोड़ा सा आपने भून लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, पाए जो बहुत अच्छे से गले हुए वो डाल दीजिएगा और हल्की आग पे आधा घंटा छोड़ दीजिएगा। आधे घंटे के बाद चूल्हा बंद कीजिएगा। अब एक टुकड़ा आपने जायफल का लेना है, एक टुकड़ा जावित्री का लेना है, 4 छोटी इलायची ले लीजिएगा, अगर काला वाला जीरा है तो काला जीरा एक जाएगा, इनको अच्छी तरह से आपने कूट लेना। कूट के बिल्कुल एंड में आपने डालना है, गरम गरम होगा, एंड में वो डालना, हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। बेहतरीन किस्म के पाए जो हैं तैयार हो जाएंगे मटन के।
0: ऑल राइट, तो रिजा ने आपको अच्छे तरीके से जो है वो बता दिया है कि मटन के पाए आपने किस तरह बनाने हैं और पायों की सफाई किस तरह करनी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छे तरीके से रिजा ने आपको इसकी रेसिपी से आगाही फराम कर दी है, सो यू मस्ट ट्राई एंड एंजॉय। और साथ ही साथ मौसम भी जरा चेंज हुआ है रिजा, आप अच्छी से हमें टिप्स भी दे रही होती है, थोड़ी सी ना अभी भी लाइट लाइट सी ड्राइनेस शुरू हो गई है,
1: खुश्की स्टार्ट
0: प्यास भी लग रही है, और मतलब ये कि थोड़ा सा पानी पियो। इस सिचुएशन में रिजा कोई ऐसी रेमेडी या कोई ऐसी चीज है जो हमें ट्राई करनी चाहिए?
1: देखिये, एक तो ड्राइनेस की जब बात करें तो उसके लिए ये बड़ा बेहतरीन किस्म का जो मैं लोशन का बताती हूँ, आपने जैसे लेमन जूस ले लेना है, आपने ग्रेसिंग ले लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा आपने ऑलिव ऑयल डाल देना है, तो इनको सबको मिक्स करके रख देना है एक बॉटल के अंदर, ठीक है, ग्रेसिन, ऑलिव ऑयल और उसके साथ आपने ले लेना है लेमन जूस। अब जैसे आपने लेने हैं 2 टेबलस्पून के इतना आपने लेमन जूस लेना है, तो आपने एक छोटी बॉटल जो है ग्रेसिन की मिलती है वो डाल देना, ठीक है, 2 तकरीबन 1 टेबलस्पून के इतना आपने ऑलिव ऑयल डाल देना। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से शेक करके आप रख लीजिएगा और इसके अंदर रोज वाटर भी डाल देना, अगर आपके पास सही वाला रोज वाटर है तो वो भी 2 टेबलस्पून डाल देना। इसको सब चीजों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और अब आप जैसे सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, थोड़ा सा हाथों पे, फेस पे, पाओ पे लगा लेना। इससे क्या होता है कि पाओ की एड़ियां भी नहीं फटती हैं, वरना सर्दियां स्टार्ट होते ही ये सबसे पहले ये सिलसिला शुरू होता है। तो आपने क्या करना है वो आपने अच्छी तरह से लगा देना। और जहां तक ये कि प्यास भी लग रही है, अब बहुत ठंडा पानी आपने इस्तेमाल ना करें, ठीक है, ज्यादा ठंडा पानी पियेंगे तो वही गले खराब, फिर फ्लू वगैरह का ही सारा, तो कोशिश कर लिया करें कि जैसे हमारे यहाँ पहले भी होता था कि सुराही रख लेते थे, मिट्टी का मटका रख लेते थे, उसका इस सीजन में जो ना वो पानी बहुत बेहतर है, वो मटके को धो के साफ करके उसको पानी से भर के आप उसका इस्तेमाल करें, तो बेहतरीन किस्म का पानी होता है ठंडा, ऑटोमेटिक उसमें फिल्टर भी हो जाता है, तो वो बेहतरीन है। अगर फ्रिज के हम ठंडे पानी पीते हैं तो वही सिलसिला शुरू हो जाएगा, गले खराब है, फ्लू हो रहा है, ये सबसे चल पड़ता है।
0: ठीक है जी, तो ये भी आपको अच्छे से टिप्रदा ने बता दिए। अरे जो मटके का पानी होता है वो फिल्टर भी खुद ही हो जाता है, आपने सही कहा, वो अच्छा है, लेकिन आम टाइम में वो ठंडा ठंडा रहता है ना,
1: बड़ा जबरदस्त पानी होता है। अच्छा, मुझे अभी जहन में मेरे यही आ रहा है कि वो जो मेरे पास मटका रखा हुआ है, मैंने तो ज्यादातर अपने दरवाजे के पास रखा हुआ है, अब मैं सोच रही थी कि उसको धो के साफ करके उसको इस तरह से करके भर के रखे कि हम भी पी लें, वो भी पी लें, बाहर जो लोग हैं वो भी पी लें, तो बड़ा जबरदस्त उसका पानी होता है। आजकल बॉटल्स बड़ी अच्छी मिली है।
0: हाँ, वो मटके वही मतलब हाँ। जो उसको कहते हैं, उसे कहते क्या है, मिट्टी की
1: बॉटल होती है मट्टी की, जिस तरह से मटके हाँ। वाला होता है। लेकिन एक चीज आप नोट कीजिएगा, जो वो कुमार के हाथ से बने हुए मटके होते हैं, मट्टी की हांडियां होती हैं, उसका अलग एक टेस्ट होता है। जो ये मशीन की बनी हुई है ना, उसका अलग पानी का टेस्ट होता है। ये मशीन की जो बना लेते हैं ना, उसमें वो मजा नहीं आता जो सही उनके हाथ की बनी हुई मट्टी की होती है।
0: हाँ, ये बात तो है, ये डिफरेंस एक होता है और सही बात है, लेकिन ये अच्छी चीजें हैं। अब हमने ना फ्रिज का पानी, वो प्लास्टिक की बोतलें रहता सेहत के लिए इतनी खराब है हाँ। और हम जो है वो एक प्लास्टिक की जब बोतलें खरीद लेते हैं तो कई सालों तक उसे चला रहे होते हैं।
1: सही बात
0: और
1: है।
0: और जो उसकी प्लास्टिक है, उसके जो टॉक्सिन चीजें हैं, वो आपको इतना मुतासर करती हैं, लेकिन हम बड़ी उसमें कन्वीनियंट भी लगती है।
1: बस ये चेंज कर लिया करें, जैसे और नहीं तो ज्यादा ये होता है कि हम 4-6 महीने में चेंज कर लिया करें। ज्यादा इतनी महंगी भी बॉटल्स नहीं है, 200-250 की आ जाती हैं 2-3 बॉटल्स। मैंने भी अभी नई ली थी, बड़ी अच्छी बॉटल्स मुझे मिल गई थी, मेरे ख्याल 250 की ली थी। तो इस तरह से वो बॉटल को वो ये कि एक तो पानी जब हम भर भर के फ्रिज में रख रहे होते हैं तो अक्सर ये होता है कि उसके अंदर तय भी जम जाती है, वो भी खतरनाक होती है ना, तो बेहतर है कि आप बॉटल्स चेंज कर लिया करें।
0: ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है। तो आपको हमने बता दिया कि आप किस तरह पानी पिए साफ सुथरा अच्छा मजे का, और साथ ही साथ रेसिपीज का सिलसिला भी जारी है। आप FM 100 के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें 3636 पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं 1 बजे तक, तो इस सुनहरी मौके का फायदा उठाएं और अपनी पसंद की रेसिपीज पूछें। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं ब्रेक की जानिब, आते हैं वापस ब्रेक के बाद।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मनशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें। मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया। FM 247/365

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में, जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: 100 FM।
4: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है, और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, या ये 6 हिंसों का कोड भेज दें। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है, जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए? अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इत्तला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा ہو یا پن لگا دیا گیا ہو. اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں, سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے, بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں, اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں. میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں, اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں, سیٹنگز اکاؤنٹ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن, یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں, ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے, اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں, مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں, ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں, سیٹنگز لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں, اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
7: FM 24/7/365. FM 24/7/365.

0: Yes, everybody. तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज. तो अब इसका मतलब है कि जो जब बाकायदगी से आगाज हो चुका है तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको भी तरीका कार बता देते हैं कि कैसे आप बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा. तो इसके लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे. साथ ही साथ आप आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी कमेंट कर सकते हैं क्योंकि वहां पे भी स्टेटस हो चुका है अपडेट. तो भाई कैसा गुजर रहा है आपका दिन? आज छुट्टी का दिन है तो आराम करने का प्लान है या फिर बहुत सारे काम है और ये प्लान है कि जल्द अज जल्द अपने कामों को निपटा दिया जाए या फिर कोई और बात है या फिर बैड लक है, कोई छुट्टी का दिन नहीं है बल्कि इट्स अ वर्किंग डे. सो व्हाट्स गोइंग ऑन, प्लीज हमें जरूर बताएं आप लोग. और आज सैटरडे का दिन है, इट मींस लिसनर का दिन है, तो आपकी पसंद के म्यूजिक को भी हम शामिल करेंगे. सो बहुत कुछ होगा भाई जो हम आपके साथ करने वाले हैं, यानी कि बहुत सारी बातें और बहुत सारा म्यूजिक. और इसी के साथ साथ मौजूद है ब्रेक, तो पहले ब्रेक एंड देन वी विल बी राइट बैक.
1: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.
1: This program is brought to you by
3: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. कॉल नाउ एट 03111117837.
1: facebook.com/fm247365
4: FM 247365.

Alright जी, so we are back and yes, आप लोगों के साथ हमारा गुफ्तगु का सिलसिला जो है वो जारी है और हमें मैसेज करते हैं समी शेख, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कहते हैं मैं आपका शो तब से सुनता आ रहा हूँ जब FM 100 ज्वाइन किया था आपने, रिक्वेस्ट शो से स्टार्ट किया था। बिल्कुल जी, ऑल राइट जी, और कहते हैं ओके, आपकी आईडी पर रिक्वेस्ट सेंड की थी पर वो अभी तक पेंडिंग है। ओके चलो जी समीक्षा की तो अच्छी बात है कि आप हमें तब से सुनते आ रहे हैं, जबरदस्त हो गया है। बिल्कुल, आप ही लोगों के लिए हमने पेज बनाया ताकि आप आसानी इस पर कमेंट कर सकें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। सो आई एम तो एब्सोल्युटली गुड, आप बताएं आप ठीक ठाक हैं, मजे में हैं, कैसा गुजर है आपका छुट्टी का दिन एंड हाउ इज योर लाइफ गोइंग? अच्छा, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम तो आपको तब से सुन रहे हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं, हाँ कभी मैसेज नहीं किया लेकिन हम आपको सुनते हैं। तो आई डोंट नो व्हाई, आप लोग मैसेज करें हमें, बिल्कुल करें, कमेंट कर सकते हैं। अब आपके पास आरजे फातिमा खान का पेज मौजूद है या फिर आप हमें 3636 पर मैसेज करें और अपनी हाजिरी जरूर लगाएं कि आप लोगों की जिंदगानी कैसी चल रही है। लेकिन भाई उसी के साथ साथ लंच टाइम स्पेशल है तो ऑब्वियसली जिक्र लंच तो कंपलसरी है भाई। तो अभी हृदय से हमारी बात हो रही थी कुछ देर पहले, तो बहुत मजे के खाने जो थे वो बन रहे थे और मतलब बता रही थी हृदय कि ये बनाना है वो बनाना है और मजे के खाने की रेसिपी आपको बताई गई थी। तो उसको देखकर भी ना आपको जरा सा दिल चाह रहा होता है कुछ खाने का, कुछ पकाने का। सो ऐसे ही कुछ प्लान है, कुछ पकाने का, खाने का, या कुछ बहुत मजे का आपका लंच में है या कुछ प्लान किया हुआ है कि अभी तो वक्त मौजूद है तो क्यों ना कुछ लंच में बहुत ही लजीज सा बनाया जाए। तो आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस। तो जल्दी से अपना मजेदार सा लंच हमसे शेयर करें कि आपके लंच में क्या है, हम आपके मैसेजेस का कर रहे हैं इंतजार। और आप अपनी पसंद का ट्रैक की रिक्वेस्ट भी हमसे कर सकते हैं, बिकॉज सैटरडे का दिन हमारा लिसनर स्पेशल दिन होता है। तो कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं तो आप हमें वो भी बताएं। जब तक हम एक अदर ट्रैक की जानब चलते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

ओके, सब लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं इस ओएसटी को जो केली जफर ने गाया है. और अली जफर की तो भाई क्या ही बात है. उसी के साथ साथ इस ड्रामे को भी बहुत पसंद किया जा रहा है जो कि है आपकी. सब लोग बड़े शौक से देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं. और सोसाइटी का बड़ा प्रेशर आ रहा है कि जी इस ड्रामे को देखना चाहिए. तो मैंने भी इसका देखना शुरू किया है, लेकिन दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस. अच्छा, हमारे एक्टर्स की ये बात है कि अगर एहसन खान की बात की जाए जो कि इसका मेन किरदार है, उरवा भी है इस ड्रामे में, लेकिन एहसन खान इज प्लेइंग सो वेल. और एहसन खान की भी ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो हर रोल में बहुत अच्छे से खुद को ढाल लेते हैं और इसी वजह से वो हर कैरेक्टर को ना बहुत स्ट्रांग बना देते हैं और उसकी वजह से ना आपको मजा भी बड़ा आता है वो ड्रामे देखने में. और एहसन खान इटसेल्फ एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के मालिक भी हैं. ही हैव अ वेरी नाइस पर्सनालिटी. और बहुत सारे कुछ स्पेसिफिक रोल्स हैं जो किसी एक्टर पर बहुत सूट करते हैं. तो मुझे लगता है एहसन खान एक वो शख्स हैं जिन्होंने अपने आप को हर कैरेक्टर में, हर रोल में अच्छे से ढाला हुआ है कि आप उनका कोई भी ड्रामा देखें ना तो आप कभी भी डिसहार्टेड नहीं हो सकते, बल्कि आपको बहुत मजा आता है. सो ऐसे हमारे ग्रेट एक्टर्स मौजूद हैं जो कि अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से लोगों को बड़ा खुश रखते हैं. सो एहसन खान बिल्कुल ऐसी है. और मुझे उरवा की भी थोड़ी एक्टिंग डिफरेंट लगी है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस. कभी कभी आप कुछ एक्टर्स को थोड़ा डिफरेंट रोल में देखते हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है. तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन और एक अच्छा पेयर भी हम लोगों के सामने आया है, उरवा और एहसन खान का. हालांकि दे हैव ऑलरेडी वर्क इन अनदर ड्रामा, या आई रिमेम्बर दैट ड्रामा, बट उसमें उन दोनों का साथ कोई रोल नहीं था, लेकिन एटलीस्ट दे वर इन द सेम ड्रामा. बट अभी अच्छा लग रहा है इन लोगों का रोल. खैर जी, हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाउ आर यू. वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं. कहते हैं ऑफिस से सुन रहे हैं ये हमें. कहते हैं दिन सो सो के गुजर रहा है. ओ माई गॉड, सो सो के गुजर रहा है. कहते हैं मेरे शहर का मौसम भी अब गुड है. मौसम को क्या कहती हैं आप, बिल्कुल बताएंगे आपको. कहते हैं आलू गोश्त है इनके लंच में, और कहते हैं आपके लंच में पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा. रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी. तो चलें जी, रशीद खान आपको सॉन्ग सुनाते हैं, फिर वापस आकर अपना लंच आपको बताते हैं कि हमारे लंच में क्या है.

के जी तो सजाद अली की आवाज आप लोग सुन रहे थे, इसकी रिक्वेस्ट हमसे रशीद खान ने की। और रशीद खान ये भी कह रहे थे कि जी कराची का मौसम क्या कहता है, तो भाई कराची का मौसम इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे ही अच्छा चलता रहे तो भाई मैं कहूंगी कि मजा ही आ जाएगा। बट कब तक अच्छा चलेगा, अभी फिलहाल अगस्त वैसे भी खत्म पजीर होने जा रहा है, अब दो तीन दिन ही तो रह गए अगस्त के खत्म होने में, तो प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली यही है कि भाई मौसम अभी अगस्त के महीने में तो अच्छा रहेगा। सेप्टेम्बर को मद्देनजर रखते हुए कोई ताजतरीन सूरत हाल अभी तक तो सामने नहीं आई है। बारिश का जो प्राइम टाइम था, जो सीजन था, वो तो गुजर चुका और कराची में कोई बारिश नहीं हुई, जो कि इस साल के शुरू की ही प्रेडिक्शन थी कि देयर इज नो रेन कराची टुडे, आई मीन इन दिस ईयर। और ऐसे ही हुआ कि वाकई में कराची में बारिश नहीं हुई, तो ये एक थोड़ी सी सैड चीज रही। लेकिन द गुड थिंग इज दैट कि मौसम अच्छा रहा अगस्त के महीने में, वैसे उमूमन तौर पर मौसम अच्छा ही रहता है। अभी सितंबर और अक्टूबर में किस किस्म का मौसम को हम एक्सपीरियंस करेंगे, इसके लिए तो वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। ऑल राइट जी, जब आप किसी सॉन्ग को बार बार सुनते हैं तो दिमाग उसकी नेक्स्ट लिरिक्स या बीट को प्रेडिक्ट करना सीख लेता है, इसलिए कभी कभी सॉन्ग बंद होने के बाद भी वो दिमाग में ऑटोमेटिकली चलता रहता है। तो क्या कभी आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि कभी कभी कोई गाना आपको इतना पसंद आ जाता है कि आप उसे बार बार सुन रहे होते हैं, और होती मजे की बात यह है कि वो गाना खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसे सुन रहे होते हैं। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कुछ गाने आपके इतने फेवरेट हो गए? अच्छा, ऐसा वाकई में होता है। मुझे याद है कि पसूड़ी जब नया नया आया था, तो आई रिमेम्बर कि हमारे घर में शादी थी मेरी बहन की, सो उस टाइम पे वो नया नया आया था, तो मेरे कजन ने कहा कि भाई चलो ये गाना है, चलो इसको भी सुनते हैं। अब वो उस वक्त सुना, उस वक्त तो समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद वो इतना कोई पसंद आया कि मतलब बैक टू बैक उसे सुने जा रहे हैं। और वाकई में जब आप एक गाने को बहुत ज्यादा सुनते हैं ना, फिर वो आपके दिमाग पर सवार हो जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जो शायद हमें पहली दफा सुनने में अच्छे नहीं लगते या कुछ, लेकिन उसके बाद जब आप उसे सुनते हैं ना, तो ओ माय गॉड, आपका दिमाग बस उसी गाने के बारे में हर वक्त सोच रहा होता है, या आप मुसलसल उसी की लिपसिंग जो है वो कर रहे होते हैं। अच्छा भाई, समी शेख कहते हैं आज ऑफ नहीं है बट कल ऑफ होगा, जबरदस्त हो गया भाई। लुकपल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसी हैं, कहां हैं, क्या चल रहा है आपकी जिंदगानी में? कोई अच्छा सा ट्रैक वैक सुनना है तो बताइए भाई, क्योंकि आज लिसनर स्पेशल डे है। तो जब तक आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ कोई मौजू भी या कोई बात भी करना, तो हम चलते हैं एक अदर ट्रैक की जाने, फिर वापस आके करते हैं आपके मैसेज को शामिल। 3636 पे मैसेज करें या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर।

0: कोई म्यूजिक जो है ना वो आपको शुरू में शायद अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप उसके बाद सुनते हैं ना तो आपको बहुत मजा आता है और वो आपका मोस्ट फेवरेट ट्रैक बन जाता है और फिर आप उसको ऑफ द रिपीट सुनते रहते हैं लेकिन आप बोर नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो हमें बड़े पसंद होते हैं। तो भाई हमारे पास मैसेज आया है, लुकवर्ल्ड कहती है जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रवली आरजे? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं। कहती है आज लंच में पाए हैं। अरे वाह भाई, पाए द मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ एवरीबडी एक्सेप्ट मी, बट एवरीबडी रियली लाइक्स इट। कहती है जी ऐसे ही होता है, मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो मैं बार बार सुनती हूं। ओके, कौन सा है भाई फेवरेट सॉन्ग, हमें तो बताएं यार। जरीनूर आ चुकी है वापस, कहती है सलाम, कैसी हैं, थोड़ी बिजी थी शो नहीं सुन सकी। जरीनूर बहुत लंबा अरसा हो गया कि आपने जो है वो नहीं सुने हैं हमारा शो, मतलब इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो क्या बिजी हुई थी आप भाई, ऐसा भी क्या बिजी होना कि आप तो भूल ही गई अपनी आरजे को। ऑल राइट जी, और जरीन नूर का मैसेज भी आया है, उन्होंने अपना खाने में बताया, कहती हैं आज खाने में चिकन कढ़ाई है, वेरी नाइस। लुकवर्ल्ड कहती हैं कि प्लीज प्ले मेरी जिंदगी है टू एंड डेडिकेट टू यू माय स्वीट लवली आरजे। ओह थैंक यू, चलो जी इसे हम जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे, वी हैव टू फाइंड दिस एंड वी विल प्ले। कहती है आप भूल गई मुझे मगर मैंने तुम्हें मिस किया नहीं। जरीनू ये आपने कैसे फैसला किया कि जी हम आपको भूल गए हैं, आपने तो हमारा शो ही नहीं सुना, हमने आपका जिक्र किया बट आप ना आई पलट कर। तो मैंने कहा पता नहीं भाई जरीनू गई तो गई कहां। तो भाई मसरूफियात होना समटाइम्स वाकई में आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं क्योंकि आपके पास इतना सारा काम आ जाता है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दिस कि भाई वाकई में जिंदगी में बहुत हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी कभी आपके पास बहुत ज्यादा बर्डन होता है, कभी कभी आपके पास बहुत सारा काम होता है और कभी कभी आप बहुत ज्यादा फ्री होते हैं। ऐसा भी होता है आपकी लाइफ में कि कभी कभी यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू एंड समटाइम्स यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू ना। तो कभी कभी जब आप बहुत बोर हो जाते हैं ना तो आप यार सोच होते हैं कोई काम मिल जाए, कोई चीज हो जाए कि मैं कुछ ना कुछ मसरूफ हो जाऊं। और कभी कभी वाकई में इतना काम होता है, वो कहते हैं ना कि जी सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिली, तो ऐसा भी है। लेकिन अच्छी जिंदगी वही है जो बिजी है, क्योंकि बिजी लाइफ में आपके पास ना ये टेंशन नहीं होती, ये नहीं सोचना वो नहीं सोचना, आप रिलैक्स कर रहे होते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। ऑल राइट जी, तो वक्त भी तेज से गुजर रहा है, मैसेजेस का सिलसिला भी जारी है। आप 3636 पे करें या आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। अभी हम चल रहे हैं एक अदर ट्रैक की जाने, बात है वापस ट्रैक के बाद, तो जाइएगा कहीं नहीं बिकॉज हम आपके साथ मौजूद हैं।
1: Bilal said.

0: जी जी, तो बिलाल सईद की भी आवाज साथ साथ सुन रहे हैं और साथ साथ भाई हमारे लिसनर्स बड़े एक्टिव हो चुके हैं। एक जाने बाजे फातिमा खान की फेसबुक पेज पर मैसेज आ रहे हैं और एक जाने मेरे पास 3636 पर मैसेज आ रहे हैं जिसे हम शामिल करेंगे। एंड द सैड थिंग इज दैट कि मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि जो सैटरडे वाला दिन होता है ना हमारा, ये इतना स्पीड से गुजरता है कि मतलब यकीन नहीं आ रहा होता कि लगता है अभी हम आए और अभी जाने का वक्त आ गया। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी हम आपके साथ मौजूद हैं और आपसे बातें कर रहे हैं लेकिन मैसेज का सिलसिला जारी है। तो 3636 पर हमें मैसेज करें या फिर आरजे फातिमा खान की ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मैसेज करें, हम आपके मैसेज और कमेंट्स का इंतजार करें जिससे हम करेंगे शामिल। लेकिन उससे पहले आ गया एक अदद ब्रेक, तो ब्रेक के बाद आते हैं वापस, खुद ही आते हैं वापस सॉन्ग के साथ नहीं बल्कि हम आ रहे हैं वापस।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: This program is brought to you by
3: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111117837।
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

ओके जी, तो म्यूजिक पर भी बात हो रही है कि भाई कुछ म्यूजिक जब आप सुनते हैं तो आपको बड़ा मजा आता है क्योंकि आपसे बड़े अटैच हो जाते हैं और आप इंजॉय कर रहे होते हैं और आपका ब्रेन भी साथ साथ उस गाने को मुसलसल गा रहा होता है। अच्छा भाई, लुकपल कहती हैं कि वो पाकिस्तानी सॉन्ग नहीं है वरना मैं बता देती। ओके जी, नो मसला। जरीनूर कहती हैं कि मैंने भी मिस किया क्योंकि वो रोज मैसेज करती थी फिर अचानक से गायब हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है, वाकई में जरीनूर गायब हो गई। हम जरीनूर का लंच शामिल करते थे, लेकिन चलो जी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब तो वो आ गई हैं फाइनली। कहती हैं कि अब आती रहूंगी, हमारे घर का काम हो रहा था, ओके टाइल्स वगैरह लग रहे थे, अब सब काम हो गया है, शुक्र है। चलो भाई शुक्र है, यानी कि जरीनूर वापस आ चुकी हैं। जरीनूर कहती हैं मुझे तो सॉन्ग बार बार सुनना अच्छा लगता है नाजिया हसन के। ओके नाजिया हसन मुझे भी बड़ी अच्छी लगती हैं और नाजिया हसन के चंद आद तो इतने मजे के गाने कि आप उसे जब भी सुने ना आपको एक बड़ी मजे की वाइब्स आती हैं। जैसे कि मुझे उनका आहा गाना बहुत अच्छा लगता है, वो भी हम शामिल करेंगे। और साथ ही साथ हमसे जो है वो लुक वर्ल्ड ने भी रिक्वेस्ट की है। लुक वर्ल्ड कहती हैं कि आरजे फातिमा खान जैसी आरजे कोई नहीं है और ना ही कोई होगा, बेस्ट और लवली आरजे, वेरी स्वीट हार्टेड। ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार का। इसी तरह आप हमें सुनती रहें और प्यार करती रहें, आप भी हमेशा खुश रहें माय लवली लिसनर। सो गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव। ऑल राइट, उसी के साथ साथ जो है हमें नसीर खोसो भी मैसेज करते हैं, कहते हैं कि किसी का जर्फ देखना हो तो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दे दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो, इखलास देखना हो तो उसको उसे मशवरा कर लो। वाह भाई वाह नसीर खोसो, एकदम से आप इन बातों में इतने जज्बाती कैसे हो गए और लोगों को जज करने लगे। बट दैट इज वेरी नाइस, और सही बात उन्होंने कही है कि ये सारी चीजें देखकर ना आप किसी भी इंसान का बआसानी पता लगा सकते हैं कि कौन कैसा है या किस फितरत का मालिक है। इन चंद चीजों से ना आपको पता चल जाता है कि कौन कैसा है या क्या उसके फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, ऐसा साथ हैं कि वो कितना लॉयल है या क्या नहीं। तो ये वाकई में चंद ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए आप किसी भी इंसान का पता लगा सकते हैं। और नसीर खोसो ने कहा है कि भाई ऐसे पता लगाएं तो ठीक है। ये सही बात उन्होंने कही है। ऑल राइट जी, वक्त तेजी से गुजर रहा है, ट्रैक्स की रिक्वेस्ट भी है, तो चलें जी पहले हम इसको शामिल करते हैं, फिर नाजिया हसन की आवाज भी करेंगे शामिल, सुजरी नूर आपके भी ट्रैक को शामिल करेंगे। अभी हम लुक वर्ल्ड के ट्रैक की जानब चलते हैं और आते हैं वापस।

ओके जी, सो इस ट्रैक के साथ आ गए वापस और लोग पढ़ने हमसे रिक्वेस्ट की थी और डेडिकेट भी किया था, सो थैंक यू सो वेरी मच। और इसी के साथ साथ कहती हैं थैंक यू लवली आर्ट जे, और इमोजीज भी भेज रही हैं, कहती हैं प्लीज वक्त को रोकें, अभी इतनी जल्दी नहीं जाएं। अल्लाह, काश वक्त मेरे हाथ में होता तो हम नहीं जाते, लेकिन हकीकत है कि वक्त जो है वो किसी के हाथों में नहीं है। और वक्त की खास बात यह भी है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये मुझे लगता है कि वक्त की एक बहुत अच्छी बात है, कभी ऐसा तो कभी वैसा। और ये अल्लाह पाक का बहुत करम है, क्योंकि हम अक्सर औकात बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं तो हमारे दिल में यही बात होती है कि यार ये वक्त कब गुजरेगा, लेकिन वक्त की वाकई में सबसे अच्छी बात यही है कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है, और इसी वजह से हमें जो है वो जिंदगी जीने का एक अलग ही मजा आता है। तो कभी ऐसा वक्त कभी वैसा वक्त। ऑलराइट, तो जरीनूर नाजिया हसन की आवाज हम जरूर शामिल करेंगे। रशीद खान कहते हैं कि ये बात सही है, जो ट्रैक पसंद हो उस ट्रैक को सुनने को बार बार दिल चाहता है, तो ये बात तो है। मजा आता है जब आप नया नया उसे सुनना शुरू करते हैं, टिल एंड तक ना आप कर चाहता है कि बस आप वो रिपीट पर सुनते रहें। अजरीनूर कहती हैं मेरी भी सबसे प्यारी आरजे फातिमा है, आप जैसी कोई नहीं। अल्लाह, थैंक यू सो मच। आज मुझे इतनी ज्यादा जो है वो तारीफें मिल रही हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां जाऊं। थैंक यू सो मच। इसी तरह आप लोग भी हमें सुनते रहें और इतना ही प्यार दिखाते रहें, बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ ये खूबसूरत वक्त जो हम गुजारते हैं अब मंडे टिल सैटरडे। तो आई एम ऑल्सो वेरी लकी कि मेरे पास इतने प्यारे और जबरदस्त जो है वो लिसनर्स हैं, जिनकी वजह से शो में मजीद चार चांद लग जाते हैं। सो यस, आई एम ऑल्सो वेरी लकी कि हमारे पास बहुत प्यारे और अच्छे जबरदस्त लिसनर्स मौजूद हैं जो हमें मंडे टू सैटरडे सुनते हैं 12 से 2 के दरमियान। और कुछ तो मेरे बड़े ही ओल्ड लिसनर्स हैं, रशीद खान हो गए, जैसे कि लुक वर्ल्ड तो भाई हमें हमेशा से सुन रही हैं, जरीनूर भी हमारी जो है वो लिसनर बन चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके साथ हमें बड़ा मजा आता है। सो आप लोग भी हमेशा खुश रहें और इसी तरह हमें याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार हमारी जानिब से आपके लिए भी। अच्छा जी, तो हमें कहती हैं लुक वर्ल्ड की रिक्वेस्ट शो नहीं है, फिर भी आप रिक्वेस्ट पूरी कर देती हैं। अरे थैंक यू सो मच। कहती हैं अल्फाज कम हैं आपकी तारीफ के लिए। अल्लाह, थैंक यू बहुत शुक्रिया आप लोगों का और आप लोगों के प्यार का। ऑलराइट जी, मैंने भी ये सोचा है कि अभी ऐसा है कि आजकल हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं और मजे मजे के। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपका कोई पुराना म्यूजिक सुनने का दिल चाह रहा होता है या किसी लिसनर को सुनने का दिल चाह रहा होता है, तो इसीलिए अभी बैठे बैठे मैंने डिसाइड किया कि इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात आपसे मंडे वाले दिन होगी, तो मंडे को हम आपकी पसंद का, सिर्फ आपकी पसंद के म्यूजिक को शामिल करेंगे। अब वो पुराना कोई ट्रैक है जो आपको सुनना है या कोई नए ट्रैक्स हैं जिसे आप सुनना चाहते हैं, सो डील डन होती है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हम जो है आपसे आपकी पसंद के ट्रैक्स को शामिल करेंगे, यानी कि मंडे को हम सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट जो रखेंगे आपकी पसंद के गानों को करेंगे इंशाल्लाह और अजीज शामिल। अंटिल एंड अनलेस रखें अपना भरपूर ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, इसी तरह हमें सुनते रहें। मुलाकात होगी आपसे मंडे वाले दिन एक नए टॉपिक के साथ और आपकी पसंद की म्यूजिक को भी शामिल करेंगे, तो इंशाल्लाह हम फेसबुक पर भी स्टेटस अपडेट करेंगे। आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज को आपने फॉलो करना है और वहां पर भी आप कॉमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें 3636 पर मैसेज कर सकते हैं। तो अपना रखें भरपूर ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, छुट्टी के दिन को खूब एंजॉय करें और हमें जरूर बताएगा कि कैसा गुजारा आपने अपना छुट्टी का दिन। Allah Hafiz everyone and God bless you all.

0: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जास्ट कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जास्ट कैश है ना।
1: 100 FM।
2: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: This program is brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Like us on facebook.com/fm247365
5: FM 247365

0: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: अनजान नहीं था
1: जी हाँ। अब पहुंचे, रात गुजरी है, दूसरे दिन देखता हूँ कि आसफ खान दोनों कफायत खड़े हुए, यार शूटिंग शुरू करो।
0: चलो
1: अल्लाह के बंदे,
0: कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, शूटिंग शुरू करो भाई।
1: इस दौरान मैं रास्ते में आते भी सोच रहा था, चल रहा था, लिख रहा था, कर रहा था। तो तकरीबन कोई चौथा पांचवा हिस्सा मैंने उसका स्क्रीन प्ले बना लिया था। मैंने कहा यार क्या कह रहे हो भाई, फिल्म बना रहे हो, इंटरनेशनल फिल्म बना रहे हो, या उसके लिए स्क्रिप्ट मुकम्मल? यार देखो यहाँ तो खर्चा बहुत ज्यादा है, 50,000 रुपया दिल्ली का खर्च है, पता नहीं इतना बताया कितना, कुछ करो। मैंने कहा ऑलराइट भाई। अब ये क्या था कि डेली जो सीन अगले रोज पिक्चराइज करना है वो रात को मैं लिख रहा हूँ,
0: लिखना बैठ के,
1: सुबह उठ के तमाम टीम को उठा रहा हूँ, उनको नाश्ते की टेबल पे ला रहा हूँ, गाड़ी में भर रहा हूँ, कोई असिस्टेंट नहीं मेरे पास, कोई फाइट इंस्ट्रक्टर नहीं, कोई डांस मास्टर नहीं, कोई फोकस मैन नहीं।
0: क्या जबरदस्त फिल्म है भाई, एक ही बंदा सब कुछ करता
1: है, सारे काम मैं करता था, डायरेक्शन और फिर डायलॉग्स पे नजर, एक्टर कर क्या रहा है। तो इतना ज्यादा मेरी जो एक एक चीज मेरे जहन में होती थी, बाकी किसी को इतना मैं समझा ही नहीं सकता था।
0: सही बात है,
1: भाई सारा कुछ जो है वो ब्लाइंड में चल रहा है।
0: ब्लाइंड, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो बस फिल्म बन गई किसी तरीके से, मेरी उसमें बहुत काविश थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बड़ा जुनून से काम किया क्योंकि मुझे पता था कि ये ऐसा चांस मुझे मिला है कि जो बहुत कम लोगों को मिलता है कि अब्रॉड आके।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और उसमें गोरे बहुत ज्यादा, अच्छा मैं प्रेशर की वजह से थोड़ा सा वो चिटलापन भी मेरे अंदर आ गया। तो ऐसे कभी कहीं एक बार में हम शूटिंग कर रहे हैं तो गोरे हार के हुए, अब एक्टर भी नहीं है हमारे पास, एक्टर भी चार पांच हैं, सारे एक्टर वहीं से लेने
0: लाजमी,
1: अब हीरोइन भी हमारे पास नहीं है। तो मैं वहीद मरा से मैंने कहा चलो यार निकलो कहीं देखते। मेरा तरीका क्या था कि स्ट्रीट में जा रहा हूँ, बाहर निकला हूँ, देखा कोई गोरा जाते हुए, करेक्टर मेरे जेन में है, उसके पास गया हूँ, मैंने कहा वुड यू लाइक टू एक्ट इन अ फीचर फिल्म? हाँ आई एम नॉट एन एक्टर। मैंने कहा यू विल बी एन एक्टर, आई विल मेक यू एन एक्टर।
0: क्या बात है, चलते फिरते दावत दे रहे एक्टिंग करने की।
1: व्हाट विल पे? मैंने कहा 20 pounds अ डे एंड बियर एंड लंच। ओके, टेलीफोन नंबर ले दिया, ऐसे मैंने सारे वॉमन अदाकार से जमा किया। अब हीरोइन रह गई, अब वहीद मुराद और मैं दोनों निकले, अल्लाह उनको जन्नत।
0: अच्छा मतलब यहाँ से आप गए तो आपके साथ हीरोइन कोई नहीं?
1: नो, सिर्फ संगीता थी, आसफ खान का पेयर था।
0: अच्छा, आसफ खान
1: वहीद का पेयर नहीं था।
0: अच्छा, वहीद के साथ कोई नहीं थी?
1: कोई ना, वो वहीं से लेनी थी।
0: अब वहीद को वहीं ढूंढनी पड़ रही थी, वहीद मुराद को।
1: वहीद मुराद और मैं हम दोनों बैठे, डबल डेकर पे बैठे, हमें एक मार्केट थी छोटी सी लगी हुई, उसमें हम गए तो देख रहे हैं अब लड़कियों को वहां तो आम लेडीज फिर।
0: सही बात है।
1: अब हमें चाहिए भी एशियन,
0: अच्छा
1: एशियन लड़की चाहिए। अब क्या देखते हैं कि एक स्टॉल के ऊपर एक लड़की है, पतली सी लंबी सी, और वो ये पैंट्स बेच रही है।
0: अच्छा,
1: जीन्स बेच,
0: अच्छा, जीन्स बेच रही है।
1: तो मैंने कहा यार वहीद भाई देखो ये कैसी है, कैसे यार भली लगती है। मैंने कहा बात करें, चलो।
0: अच्छा
1: गए।
0: अच्छा
1: तो मैंने उससे भी यही वो रट रहा है जुमला, वो यू लाइक टू एक्ट, वो मुझे देखने लगी, मैं तो एक्ट्रेस नहीं हूं। मैंने कहा वो मैं बना लूंगा, आप करेंगी?
0: या सर नो करूंगा,
1: हम ही भरे। उसने कहा मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, उनसे बात करें। इतने देर में वो उसका हस्बैंड आ गया, वो सिंह था।
0: अच्छा,
1: लेकिन मोना सिंह था। तो उससे हमने बात की, उसने बोला भाई ये तो रॉ है बिल्कुल। मैंने कहा इसकी फिक्र नहीं करो, वो मेरा काम है, बिहाइंड दी कैमरा मैं खड़ा हूं, मैं करवा लूंगा काम। ओके, यूं हमने वो समीना सिंह जो थी,
0: अच्छा
1: वो वहीद मुराद के साथ, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा, उसने फर्स्ट अपीयरेंस उसकी, मेहनत बड़ी की मैंने।
0: सही बात। फिर आपने जब वहां से एक्टर ऐसे जमा किए और उनके अपीयरेंस फिर तो लाजिम आते, वो तो फिर वही बात है, निखारना तो आपका काम था।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि अब सब कुछ आपके, वो बात हो गई कि अब वो गाला धंधा गोरे लोग जो है वो वन मैन शो हो गया सिर्फ आप ही के हाथ में, कि लिखने वाले भी खुद ही, डांस भी खुद ही करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो सब कुछ एक ही बंदा कर रहा है सब कुछ।
1: उसमें फाइट देखें, उसमें और चीजें देखें, आपको बिल्कुल ऐसे लगता है मेच्योर कोई आदमी है जो फाइट इंस्ट्रक्टर है, जिसने फाइट कराई है या और जो कितना काम है। और बड़ी प्रॉब्लम, नासर थे, ए आर नासर और अयूब कैमरा मैन, दोनों को
0: ए आर अल्लाह उनकी मगफरत का, बड़े अच्छे दोस्त है। वो रंग टीवी पे मैं प्रोग्राम करता था, तो उस पर वो हमारे सीनियर वही थे माशाल्लाह, वहां पर ए आर नासिर साहब, बड़ी मोहब्बत करते थे शोभी बड़े, बस वाह क्या बात है, क्या याद दिलाया उन्होंने नासिर भाई का।
1: तो हम बर्मिंघम में हमारा स्टे था, तो हेम्फ्रीज लेबोरेटरीज में हमारा नेगेटिव जो था वो प्रोसेस के लिए जाता था, तो वीकली नासिर साहब को भेज देते थे कि भाई आप जाके चेक कर लें कैसा है। तो अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद जब वापस आए तो जब डिब्बे खोले तो उसमें से तीन चार डिब्बों में

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: 100 FM।
6: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज

0: FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
7: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 03003641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
8: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं, जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं। इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। Register now at cyberhackathon.pk.
9: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
10: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
11: आज ही डोनेट करने के लिए 08001155 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
12: Pakistan is building a safer, smarter digital ecosystem, and we need your talent. Step up, build a cyber-safe life, and unlock premier careers in cybersecurity at the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
0: This program is brought to you by
13: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
7: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
14: Kahin anjaane mein aap dehshatgardon ki mali muawnat to nahi kar rahe? Hoshyar rahein, muhtaat rahein. Apna bank account kisi dusre fard ko hargiz istemal na karne dein aur na hi kisi anjaan account mein raqam muntaqil kare. Hundi, hawala ya bank account ke zariye دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
15: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
16: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
17: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमनगर, अक्रॉस द नेशन,
4: दिस इज FM 100,
5: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 03003641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
7: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
8: पाकिस्तान इज बिल्डिंग अ सेफर स्मार्टर डिजिटल इकोसिस्टम एंड वी नीड योर टैलेंट। Step up, build a cyber-safe life and unlock premier careers in cybersecurity at the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
9: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad, aapki ek aur donation.
10: Shaukat Khanam, Karachi ki takneef.
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
12: 100 FM।
13: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: आवर के बाद आपकी एक और डोनेशन
1: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
2: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
3: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: फिनिक्स लगा और भूल जा
6: एंड सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
7: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
8: हमने आप ना कुछ तीन बार मौत देखा।
9: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूँ कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
10: फिर उन्होंने साड़ियाँ वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
7: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
11: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
7: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैस कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
13: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
7: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
8: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
9: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
10: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
12: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा,
0: एंड सरसब्स नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
13: बैन अल-अक्वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
14: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है।
15: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
14: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
16: हमारी जिम्मेदारी है।
17: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/fm247365
18: fm247365
0: fm100 31 saal fm100 aapki awaaz। Assalamu alaikum pakistan,
18: assalamu alaikum pakistan।

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
7: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
8: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
9: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
10: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
11: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
12: आज ही डोनेट करने के लिए 08001155 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
13: 100 FM।
14: छम छम छम, किताबें लेके निकले हम। अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आ

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu bhi, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
5: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
6: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: एंड सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा।
9: 100 FM।
10: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार। And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: FM 100, like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
5: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जस्ट कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जस्ट कैश है ना।
6: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
8: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
9: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
11: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
12: 100 FM।
13: छम छम छम, किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahman, and Khan. Across the nation, this is FM 100.
1: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
6: रोकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
7: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
8: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
9: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद

0: FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
0: 100 FM।
4: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला। जैज 5G।

0: 24/7, 265. FM 24/7, 365. FM 100. 31 साल FM 100. आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.
2: Club mixes.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295 बी के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100.
5: हजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
0: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
6: तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैसकैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैसकैश है ना।
7: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
8: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: 100 FM।
9: छम छम छम, किताबें लेके निकले हम। अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
4: बैन अल-अक़वामी सतह पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ। ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में एक खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: This program is brought to you by
1: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी। सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
2: 100 FM।
3: छम छम छम, किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: स्वागत आनंद कराची की तकलीफ।
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट AS-UGO रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए।
8: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
7: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवाकर सिम की मुल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं।

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: स्वागत आनंद कराची की तकनीक।
0: FM247365 FM100 31 साल FM100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
1: facebook.com/fm247365 fm247365

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365 fm247365